हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंडे हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

0: क्या कर रही है तर्पी आ गया?
1: दौलत
0: कौन?
1: पता नहीं, तर्पी की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
0: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।